आपके एक्स जैसा मनहूस चेहरा लेकर मंडे इज बैक अगेन, बट द गुड न्यूज इज दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑन इट्स वे आउट। एंड व्हाइल इट इज ऑन इट्स वे आउट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं विच यू विश्ड वॉज ऑन इट्स वे आउट लाइक द मंडे टुडे, लेकिन वो कमबख्त रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होता बिकॉज द एक्शन इज सो गुड। एक तो एक्शन की वजह से ना रिलेशनशिप्स में लोग मारे जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, Why don't you hit me up? We will talk about it and end your Monday on a delightful note. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और जैसे भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, hit me up, we will talk about it and पक्का make you feel better. So while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot. Yeah.

0: वाले बॉयफ्रेंड को झूठ तो बोल दिया दैट यू आर अ फिटनेस फ्रीक, जब उसे पता चलेगा कि आप तो अपने बेड से बाथरूम तक जाने से पहले 100 बार सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एग्जैक्टली?
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: यू नो मेरा इशारा किस तरफ है. इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल योर कन्फेशंस. और अपनी कन्फेशन डिस्कस करने के लिए टू स्पिल द टी मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: Hi Roshi, how are you?
0: I am very good. How are you, naughty girl?
2: I'm naughty.
0: Yes, you are. आपने इंस्टा पे अपने नॉटीनेस के जो मुझे छोटे छोटे नमूने दिए थे, आई वॉन्ट टू हियर दी एंटायर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी.
2: मैं ना अकेले रहती हूँ. आई एम सिंगल एंड इंडिपेंडेंट वुमन एंड मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई. तो मैंने भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को. तो बोला कि मैम जो नीचे जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी चाहिए. तो मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर के पास थी. तो मैं उससे मैंने चाबी मांगी, उसने हेल्प कर दिया मुझे और सब फिक्स हो गया. बट हमारे पास एक्सचेंज हो गए थे उस दिन, ठीक है. उस दिन के बाद से हम रोज रात में ना सेक्सिंग करते हैं. एक दिन ऐसा नहीं है कि हम ना करें, हम लोग पूरी रात बातें करते हैं, ठीक है. सुबह
0: एक सेकेंड, नॉटी बातें करते हो आप पूरी रात, है ना?
2: पूरी रात. और कुछ नहीं पता मुझे कि वो सिंगल है या नहीं, उसे नहीं पता मैं सिंगल हूँ, बट हम कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है. हम रात में मतलब इट्स लाइक अ रोल प्ले, ठीक है. हम रात में चले जाते हैं मोड में, सुबह वो ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. हम लिफ्ट में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सोसाइटी में फंक्शन हो चुके हैं सबसे, हम मिलते हैं लोग साथ में. कोई कह नहीं सकता कि हम लोग जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात में कर रहे हैं. नॉटी बातें कर रहे हैं, यू डूइंग थिंग्स ईच अदर ऑन टेक्स्ट बट नॉट इन रियल लाइफ. और हमारी डील है कि हम कभी ऐसे ना सामने आएंगे तो मतलब एक दूसरे के सामने कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे को भी. दूसरों को तो छोड़ो, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि ओ हम रात में क्या गुड़ खिलाते हैं.
0: आर यू सीरियस?
2: या मतलब इट्स हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ. बढ़िया.
0: इज इट
2: क्या है
0: इसे डिस्क्राइब करने के लिए? देयर इज ओनली वन वर्ड, KINK. सीरियसली, लाइक आई कांट इवन इमेजिन. एंड आई डोंट थिंक आप दोनों में से किसी को रोशिफिकेशन की जरूरत है, बट बिकॉज यू आर हियर एंड बिकॉज यू शेयर्ड सच अ नॉटी स्टोरी विद मी, कर दूं आपको रोशिफाई?
2: प्लीज कर लो.
0: देयर यू गो,
3: यू've बीन रोशिफाइड.
0: अब आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू टेक, इफ यू एवर टेक अनदर स्टेप इसके बाद विद योर नेबर, यू आर गोना कॉल मी एंड टेल मी अगेन. You are such a naughty girl. आपसे बात करके इतने मजे आए. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही कोई naughty kinky काम किए हैं, why don't you send me a message on Insta या FB and whatever you do. कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ले जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट

0: जैसा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज अ मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको।
3: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड स्टार सनी देओल, एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया। एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग, और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 7.

0: तुम्हें बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उभर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में, दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी। The

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिंह से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। कैद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना। उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, यानी दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट
1: 98.3
0: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 गानिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कानिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। संजू राठौड़ की आवाज ऐसी है, सुनते ही पता चल जाता है इट्स हिज सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान कैन दीदार कौर की आवाज में। हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम। चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक। उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKanika पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

0: @RJ करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: अनीश सरकार हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियंस देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेवल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो म्यूजिक एंड मीनिंग को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे। तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ Kanika। Enjoy.

0: इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है, मुझे उस गाने के बारे में बताओ एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन, जिसमें दो नई एंट्रीज हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान। इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था। साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे STD के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे। उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल। क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया। पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल तन्हा सफर। ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडेप्ट हुआ था एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है, बिकॉज कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है बट फीलिंग तो वही वाली है। और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है RJ कनेका। एंजॉय।

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर वन।

0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: पास तुम रहते हो। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Dinner, dinner, dinner, dinner.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे सुबह की नींद को हम जेंटली नहीं बल्कि फुल ऑन मिर्ची दार तरीके से भगाते हैं। भाई बॉलीवुड के मिर्ची दार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले कर। चाहे तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर सबवे पकड़ रहे हो, या घर के लैपटॉप को खोलकर 5 मिनट्स के नाम पर अपने लाइफ के डिसीजन रिकंसिडर कर रहे हो, आई हैव गॉट यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बिकॉज ऑनेस्टली यार, देसी मॉर्निंग्स का फॉर्मूला काफी सिंपल है। गर्म गर्म चाय हो, गॉसिप उससे भी ज्यादा गर्म हो, और अलार्म को इग्नोर करने का टैलेंट तो हम बचपन से सीख कर आते हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मा की डांट को इग्नोर करते हैं। आज का शो इज पैक्ड विथ बॉलीवुड का मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, मस्ती, अ पिंच ऑफ नॉस्टैल्जिया, और वो रैंडम देसी कॉन्वर्सेशंस जो कभी तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर किया करते थे। बस वॉल्यूम बढ़ा लो, स्माइल को चढ़ा लो, और मिर्ची को अपने साथ बनाए रखो, और मुझे भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। थोड़ी देर में बताऊंगी तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में, तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स। गुड मॉर्निंग टू यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसन्ना तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर दिस डे दैट ईयर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले चलते हैं 1227 में मंगोल एम्पायर के फाउंडर जेंगिस खान पास्ड अवे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1590, एक्सप्लोरर जॉन व्हाइट रिटर्न्स टू रोनोक आइलैंड एंड फाइंड्स द एंटायर इंग्लिश कॉलोनी डिजर्टेड। 116 लोग गायब हो गए थे। देन 1877 में एस्ट्रोनॉमर एसैप हॉल डिस्कवर्ड फोबोस, वन ऑफ मार्स मून्स। नाम थोड़ा विलन टाइप का है लेकिन मार्स का छोटा सा कॉस्मिक कंपेनियन है ये। 1920 massive milestone. The US ratified the 19th amendment giving women the constitutional right to vote. ये हिस्ट्री में काफी बड़ा मोमेंट था। एंड फॉर अस देसीज, 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज रिपोर्टेड टू हैव डाइड फॉलोइंग एन अलेज्ड प्लेन क्रैश इन ताइहोकू, नाउ ताइपेई। हिज लाइफ एंड डिसअपीयरेंस रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिबेटेड हिस्टोरिकल स्टोरीज। एंड फाइनली 1958 में व्लादिमीर नाबोकोव्स कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल लोलिटा वॉज पब्लिश्ड इन द US। व्हाट्सएप का नंबर बताने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि मिर्ची करेगा बंधन पूरा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। इसमें तुम्हें अपना फोन उठाना है, व्हाट्सएप करना है मुझे अभी के अभी। सबसे पहले टाइप करना है बंधन BANDHAN एंड साथ में भेजना है अपने क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर। दैट्स 9033647244 पर। तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। और उसके बाद वेट करना है मेरे कॉल का टू पार्टिसिपेट इन मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट ओनली ऑन मिर्ची। जल्दी जल्दी अपने पिक्चर्स भेजो फॉर राखी स्पेशल कॉन्टेस्ट ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
1: आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़, ओए आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़।

झूमे गाओ है रेला ऊं चबाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड मिर्ची मॉर्निंग्स पर ये रहा तुम्हारा वेदर का हाल चाल। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 72 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काईज आर पार्टली क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है 75 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। और सुबह 6 से 7 के बीच में तो हमने थोड़ी बहुत रेन भी देख ली है, 1 मिलीमीटर की बरसात और एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट द डे। और अभी थोड़े बहुत बादल जो है वो सेटल इन हो रहे हैं, मतलब रेन ने अटेंडेंस लगा दी है, अब देखना है बरसेगा कब। आज का हाई will reach around 86 degrees Fahrenheit but it could also feel like 90 degrees Fahrenheit, यानी कि humidity, sunlight और wind मिलकर थोड़ा सा warm कर रहे हैं आज के दिन को। Yesterday का high था 84 degrees Fahrenheit, so today it's just a little bit warmer, लेकिन कुछ ज्यादा dramatic नहीं है। Overall expect a mix of clouds, some sunshine and a tiny chance of rain. तो बाहर निकलते time अपना umbrella carry करना बिल्कुल मत भूलना, साथ साथ में carry करो अपना water bottle, keep yourself hydrated, अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन लगाना बिल्कुल मत भूलना और ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना, क्योंकि मौसम और तापमान दिन भर फ्लक्चुएट करने वाले हैं। और अभी आने वाले हैं मिर्ची दर बैंगर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। बट बिफोर वी गेट टू द बैंगर्स लेट मी रिमाइंड यू, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में अभी के अभी अपना व्हाट्सएप खोलो, उस पर लिखो बंधन और मुझे भेज दो अपनी क्यूटेस्ट सिबलिंग पिक्चर्स 9033 मिर्ची पर, 9033647244 पर। यहाँ पे तो मुझे DM कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और X पर, दैट इज MIRCHIPRIS एंड देन वेट फॉर माई कॉल। राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवक एट 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इमीडिएटली ट्रांसफर करने का टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर नियरली 3 years इन प्रिजन। रिपोर्ट्स हैव साइटेड कंसर्न्स इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, heart palpitations and severe mental stress. There have also been allegations surrounding his treatment in custody. His health situation is developing, so we'll keep this one factual and respectful. Number 2 par India mein Delhi government ne class 9 students ke liye third language mandatory kar di hai. Aur catch ye hai ki jo students class 9 ka third language exam clear nahi karenge, they won't be allowed to appear for the class 10th board exams. साथ साथ मैथ्स एंड साइंस के कॉमन एंड एडवांस लेवल भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड लास्टली, बांग्लादेश के टेस्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक चेंज हुआ है। ओपनर जेक वेदरहॉल्स को ड्रॉप करके मैट रेनशो को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वेदरहॉल्स फर्स्ट टेस्ट नॉट एग्जैक्टली अ ब्लॉकबस्टर, 23-0। मीनवाइल बांग्लादेश वन द फर्स्ट टेस्ट बाय 9 wickets। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और बॉलीवुड की एक खबर आ रही है मेरे पास जो मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी। एक्टर विजय वर्मा वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज बाय होस्ट डॉली सिंह, जिन्होंने उन्हें कहा नेशंस बिगेस्ट रेड फ्लैग। उफ, विजय इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर द हिल्स हिट बैक विद बाय अ रेड क्लॉथ एंड मेक रेड फ्लैग्स। डॉली कॉल्ड दैट कमबैक लेम एंड विजय बेसिकली सेड ही वॉज लेटिंग हर टेरिबल कॉम्प्लीमेंट स्लाइड। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू बट दिस इज एग्जैक्टली kind of red flag conversation where nobody is actually waving a red flag, they are just throwing shade. और अब इस शेड को थोड़ा सा उजाले में लाते हैं, यानी थोड़ा स्पार्कल बबराते हैं यहाँ पर। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, यू कैन गेट अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, दोनों ही तनिष्क पर मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें और चाहिए तो अपना पुराना गोल्ड लेकर जाओ जो कि 18 कैरेट से अबव हो, उसे जाकर एक्सचेंज कराओ एट जीरो डिडक्शन। सो मे बी फॉरगेट द रेड फ्लैग्स एंड गो लुक फॉर रेड carpets to wear those diamonds at. Of course, terms and conditions applied है। तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है और अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

प्रसलाद हमारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर आवर बर्थडे बैश। यहाँ पर कैंडल्स कम बढ़ जाती है लेकिन सेलिब्रिटी के नाम कम नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जो भी आज सेलिब्रेट करें, आज का दिन तुम्हारा है, सो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। ट्रीट योरसेल्फ एंड प्लीज जो कुछ भी करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन को भाए, वो सब कुछ करो। आज के दिन कैलोरीज भी काउंट नहीं करती, तो यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। साइंस नहीं है, बस बर्थडे का इमोशन है, समझे। अब देखते हैं आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कौन कर रहा है। हॉलीवुड लेजेंड्स, वी गॉट द लेट रॉबर्ट रेडफोर्ड, एंड देन वी गॉट क्रिश्चियन स्लेटर, एडवर्ड नॉर्टन, एंडी सैमबर्ग हु इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम ब्रुकलिन 99, एंड मालकम जमाल वॉर्नर, मैडलिन पेच फ्रॉम रिवरडेल, एंड माया मिचेल फ्रॉम द फॉस्टर्स। म्यूजिक साइड पर बर्थडे वाइब्स जाती है लेजेंडरी इंडियन पोएट, लिरिसिस्ट एंड फिल्म मेकर गुलजार साहब को, भंगड़ा किंग दलेर मेहंदी साहब को, एंड अमेरिकन रैपर एवरलास्ट को, एंड साथ में इंडी पॉप सॉन्ग राइटर एंड सिंगर क्लेरो। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारा बर्थडे बैश होना चाहिए, बिकॉज सी हाउ कूल द लिस्ट इज जो तुम्हारे साथ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो खाओ पियो ऐश करो और मुझे अपने शाउट आउट भेज सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, जहां पर तुम्हें कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिर्ची करेगा बंधन।

0: कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, फटाफट से टाइप करो बंधन और उसके बाद अपने क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स मुझे भेज दो, या तो इंस्टाग्राम पर मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर राइट अवे, दैट इज 9033647244। फटाफट से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो एंड वेट फॉर माई कॉल। एंड राइट नाउ मिर्ची इधर गाने सुनने का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय।

चिकु हाय पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यू तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: दिस इज प्रिसिला विद यू. सुन रहे थे मिलिट्री मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड कार लेटेस्ट रेट अपडेट.
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,390 $4,390 पर ट्राई अउंस गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. सिल्वर ऑल्सो ट्रेंडिंग हायर एट $65 पर ट्राई अउंस आज सिल्वर ट्रेड कर रही है. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई अउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं. दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को. कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल्स सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com. थैंक यू.
0: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: मैं पानी पानी
1: ये मुझे खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. लेट्स चेक व्हाट द स्टार्स हैव प्लान्ड फॉर अस टुडे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: It is, यानी कि मेष राशि. आज योर ब्रेन इज ऑन. इंटेलेक्चुअल एनर्जी से ऑब्स्टिकल्स को इजिली टैकल कर पाओगे और फाइनेंसेस में भी गुड न्यूज का चांस है आज. लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन. लकी नंबर इज 8. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्क को थोड़ा सा साइड में रखो एंड ब्रीद. सेल्फ केयर, गुड फूड एंड लाइफ्स लिटिल प्लेजर्स पे फोकस करो. स्प्रेडशीट बाद में भी खोल जाएगी और बाद में भी बन जाएगी, पक्का प्रॉमिस. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज इंपल्सिव डिसीजन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वेल बीइंग. हर लेट्स जस्ट डू इट थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं मेरे दोस्त. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, एनर्जी फुल चार्ज है, बट छोटे छोटे वर्क प्रॉब्लम्स का पर्सनली मत लिया करो यार. बॉस को ईमेल भेजना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, फाइनली सम ब्रीदिंग रूम. रीसेंट टेंशन और डेली स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा. टेक दैट विन लियो, बिना विक्ट्री स्पीच दिए. लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड. लकी नंबर इज 9. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, इवनिंग में सोशल प्लान्स आर लुकिंग गुड. बस फूड एंड ड्रिंक्स में मॉडरेशन रखो. एक प्लेट चाट के बाद आई हैव नो रिग्रेट्स बोलना अलाउड है, लेकिन 10 प्लेट चाट के बाद थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा. लकी कलर इज मिंट. लकी नंबर इज 5. एंड दैट वाज राशि जोन पार्ट 1. अभी आएगा राशि जोन पार्ट 2, लेकिन उसके पहले आएंगे मिर्चीदार बैंगर्स और उसके पहले जाएंगे आप मुझे फॉलो करने मिर्ची प्रिस. मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर. फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, ड्रॉप मी अ हाय. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब हम बातें करने वाले हैं लीब्रा से लेकर पाइसीस तक।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज ओल्ड टेंशन को रिलीज करने का परफेक्ट टाइम है। रीसेट करो, प्रायोरिटीज रियलाइन करो, और जो चीज पीस नहीं देती है उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो प्लीज। लकी कलर फॉर यू इज पीच, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज सुपर हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है। अपनी लिमिट्स पुश मत करो। इंटेंशनल रेस्ट इज योर सुपर पावर टुडे। बेड इज नॉट योर एनिमी स्कॉर्पियो। लकी नंबर इज 4 एंड लकी कलर इज बर्गंडी। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पेस स्टेडी रखो एंड ओवरकम इट मत करो प्लीज। हर इनविटेशन, हर फेवर एंड हर प्लान का आंसर यस होना कंपलसरी नहीं होता है, कभी कभी नो बोलना भी चाहिए। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 1। केबरगॉन यानी मकर राशि, हेल्थ कॉन्शियस चॉइसेस आर योर स्टार्स फेवरेट टुडे, स्पेशली कैफीन एंड स्टिमुलेंट्स थोड़े कट बैक करो, मतलब कि थर्ड कॉफी से पहले मे बी एक ग्लास पानी ट्राई कर लो। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव। लकी नंबर इज 10। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, क्रिएटिविटी इज योर हैप्पी प्लेस टुडे। आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, कुकिंग, जो कुछ भी है which makes your brain go ooh interesting, go for it. Fresh perspective bhi milega. Lucky color is electric blue. Lucky number is 11. And last but not the least, Pisces yani ki mean rashi, romance is in the air. Compassionate communication se close relationships aur strong ho sakte hain. Dil ki baat bolo yaar, bas apne chat ko khol kar indicator ko 45 minutes tak stare mat karo. Lucky color for you is rose pink. Lucky number is 12. And that wraps up Rashi Zone part 2 only on Mirchi Morning with me Priscilla. बने रहो मेरे साथ on social media as well. X and Instagram पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब दी एंड का टाइम आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कर्टन रोल हो रहा है, क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, यहाँ पर से रैप अप पैक अप सब का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्ची पर चल रहा है कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, वो भी राखी के उपलक्ष्य में। फटाफट से अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप निकालो और टाइप करो बंधन, उसके बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और साथ साथ में भेजो मुझे अपने क्यूटेस्ट राखी मोमेंट्स, सिबलिंग मोमेंट्स, कोई भी अच्छे से पिक्चर्स जो तुम्हारे भाई बहन के साथ है वो भेज सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर। दैट्स 9033647244। और भेजकर करना क्या है, वेट करना है तुम्हें मेरे कॉल का जो कि जल्दी आएगा, और उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में। एंड यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो ताकि तुम राखी के पहले कुछ जीत सको अपने भाई या बहन के लिए। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल, छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसला एंड ऑफ कोर्स सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। सुनते रहो ना यार, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मामा टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म। ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट। सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छेड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज़ लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची

0: गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं। गिव इट a listen।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: I'm not too sure, आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: सनाए क्यों जिस्म थर थर आए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम आपके कौन एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके कौन देखे क्या।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए। और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते हैं। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई, तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, Sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
4: यादों को चिट्ठी।
3: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पड़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot. Mirchi. It's hot. Sara zamana hai sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Uff, ye sawal hum aksar pyar se karte hi karte hain. Kaun sa sawal? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना
3: प्यार तूने क्या किया हे प्यार तूने क्या किया
1: बट डू यू नो इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है But isn't it cool कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर खुद से हुई मैं बेखबर मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ अरे अरे अरे अरे आप कहाँ चल दिए अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे स्टे ट्यून टू मिर्ची इट्स हॉट
4: मिर्ची इट्स हॉट

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है। तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वॉन्टेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? D.A.R. रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियो, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हु सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया है जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज अगला गाना इज अ कल्ट सॉन्ग. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या जिंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है. सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये. यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था. यही गाना था पुंगात्रू पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले. कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया. कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला
1: एक चतुर नार।

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोपिन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं, आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।
1: दीवाना

0: और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, दुनिया में कई लड़कियों की इंस्पिरेशन है।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: प्यार से इनको देसी गर्ल भी बोलते हैं। नाम है इनका प्रियंका चोपड़ा जोनस।

और भाई इस बंदे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम लगती है मुझे, क्योंकि द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी, द काइंड ऑफ करियर ग्राफ जो इस बंदी ने अपने लिए बनाया है इज स्टुपेंडस एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम। कहां छोटे शहर से आई ये बंदी, आज इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। एंड टैलेंट की बात तो भाई क्या ही करें, कूट कूट के भरा हुआ है। इनफैक्ट रीसेंट अपडेट इज कि प्रियंका चोपड़ा जोनस जो हैं वो एकेडमी अवार्ड विनर एक्टर रसल क्रो के ऑपोजिट एक साईफाई एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे जिसका नाम है ब्लू फ्लाई। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा के पर्सनल ओपिनियंस जो है ना जिंदगी को लेके, दैट इज समथिंग जिसके लिए मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं यार, अ ट्रू फेमिनिस्ट एट हार्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोश राय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपनी उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: अर 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: इंटरेस्ट लेवल 200% हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जब भी किसी फिल्म में या फिर किसी OTT सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है, वेल आई एम श्योर यू वुड कनेक्ट विद दिस फीलिंग ऑफ माइन। वेल इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने अमेजिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हमें दिए हैं। वेल इन द लिस्ट नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे बेगम्स, डायरेक्टेड बाय अलंकृता श्रीवास्तव, वर्नीला चैटर्जी एंड इति अग्रवाल। ये ड्रामा वेब सीरीज पूजा भट्ट का कमबैक भी थी। वेल इट एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ 5 एम्बिशियस वुमेन जो अपने लाइफ के ड्रीम्स और डिजायर्स के बीच सोसाइटी से भी लड़ रही हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पे एक्सप्लोर भी कर रही हैं। इन शॉर्ट इट इज अ सीरीज दैट अ मॉडर्न डे वुमन वुड डेफिनेटली रेजोनेट विद। मूविंग ऑन नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट माई येट अनदर थ्रिलर सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स जो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हमारे बीच लेकर आती है। वेल माई इज डायरेक्टेड बाय अंशाई लाल एंड अतुल मोंगिया जिसमें साक्षी तन्वर लीड रोल में नजर आ रही हैं। वेल द सीरीज फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ ग्रीविंग मदर जिसकी बेटी की ट्रेजिक मौत हो जाती है। मोर ओवर शी डिस्कवर्स द क्रिमिनल्स बिहाइंड द डॉटर्स डेथ एंड टर्न्स मर्सीलेस टू फाइंड द रियल कॉज। इन शॉर्ट ये कैरेक्टर दैट इज शील चौधरी प्लेड बाय साक्षी तन्वर इज अ कैरेक्टर दैट शोज the true power of a mother. So yes, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी इट्स हॉट।

को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.